चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। तितली के रथ पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं। हर कदम पर चुन्नु मुन्नु मिठाई खाते हैं। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल छिड़ी।

नन्नी चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए, नन्नी चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में, फिर

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हिल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Hi, Judy, aren't you trying this? It's very nice. Have more. Hi, Sheva.
2: Hi.
1: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
3: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ.
1: डाइटिंग? लगता तो नहीं.
3: हे,

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

इस देश का बचपन भूलता हूँ, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

0: Zo, ja, en blijft allen afgestemd.
1: Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और अदा। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे, आज शुक्रवार 8 तारीख मई का प्रोग्राम। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए।

आज शुक्रवार 8 मई का प्रोग्राम जो आप लोग सुनेंगे दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। करीबन 10 मिनट व्यतीत हो चुका है 9:03 खुद मोर खालम आओ। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज आप लोग सुनते हैं वहां तक हम आप सभी को आज सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। उजाला रेडियो का दफ्तर आज के सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे दिन में 3 बजे से पंतीन तोद्री। यहाँ का फोन का नंबर है 9 20 9 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए। उजाला रेडियो का वेबसाइट का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी भी आपको मिल सकेगा।

हमारे प्यारे सुनने वालों, देखा जाए प्रोग्राम को भी बहुत प्यार के साथ दनहाख शहर में भैया आनंद जग्गू जी प्रोग्राम को सुन रहे, तो ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ सेज आत्मा जी की आवाज में।

0: वो सनम।
1: वल अजरे अजरे वो सनम। और इस तरह से सैयद चातमा की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम देखा जाए जनहा शहर में भी भाई राकेश प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद अमरख। गुड मॉर्निंग यार, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, वीकेंड का प्रोग्राम यार।

दिल की बात है यार, दिल की बात है तो दिल में रह जाते हैं। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रही थी, और देखा जाए भी उस तरफ आकर में भाई हैंग गोपी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। और इस गाना को चलिए हम आप दोनों के लिए बजा देते हैं, और खास करके बहुत ही प्यार के साथ अपन लिफ लिफ फ्रउआ के लिए यार। लता एंड कुमार शानू जी की आवाज में

दिल कहे हम सफर तेरा हर एक मोड़ पर। लता एंड कुमार शानू जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। नाउ हम तो लोग से बता दें कि एपवा अंदर आई गए वत खाऊं फंदा कोकन अतिस फ्राइडा अतिस बैना वीकेंड और दरहा शेर से राकेश पठाई से बोले भाई सुभाष आज बनेगा मुर्गा या हर द किप खूब तीता तीता और कौशमांत्र लेकर भैया एच स्मैकलट वेल मुंह से पानी चुआ दी भैया सवेरे सवेरे हर द किप बनाएगा यार मुर्गा खूब तीता तीता खूब लुटपुटा रे और देखा जाए मानो भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हो दौर में अपने श्रोश के लिए गाना को

तेरे बिना यार ये दिल धड़कता नहीं यार, तेरे बिना ये दिल लगता नहीं। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रही थी। चलिए अब की बार देखा जाए राजेश बनारसी भाई, राजेश बनारसी काम पर है एन उजाला रेडियो का प्रोग्राम बैठ करके सुने हैं, नंबर के सुने काम करे और सुने हैं। या तो चाय या तो कॉफी के साथ अगर आप बैठे हुए हैं, या तो आप लोग ऑन बैज करते होंगे तो स्वादिष्ट ऑन बैज कीजिए चाय या तो कॉफी के साथ। एंड भाई राजेश बनारसी काम पर है एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुने हैं।

कमल यार, तेरे बिना ये दिल जो है ना, तो तेरे बिना ये दिल बहुत ही मुश्किल है। उस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम देखा जाए, बेल्ही में सुनीता भी प्रोग्राम को बरकर सुने ही, तो सुनीता ये गाना तुम्हारे लिए।

यार रात भर तेरा नाम लिया। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, अतिश भाई ना वीकेंड और मोई वेरबा अतिश मोई लकर वेर यार। और आप सभी को, आप सभी सुनने वालों को फाइन वीकेंड तो खबर हमारी तरफ से। जो भी वीकेंड में आप लोग करेंगे प्यार से दुलार से कर लेना, वीकेंड तो आप चाहे जो ची करिए प्यार से दुलार से करिए यार।

वर्ल बलियार तेरा तेरा नाम लिया तुझे तुझे हर पल पुकारूं यार और कई समय पठाई से एप खुद मूर्ख और बोले आज का रेसिप फन केस इज विद बेरी खरनालन और उर्दी के दाल कुप्ती तातीता आई बॉय अश्विती यार दस झिंगा बनाएगा किस विद बेरी खरनालन में उर्दी के दाल अश्विती यार कोक्स अलमाल एंड फॉर स्ट्रक्चर्स एट यू अलमाल मोइस खाइए एट यू स्मैकल अलमाल सबेरे ये बेल रेसिपी मिले है इट इज वेल लेकर हो हाँ मेरा केस बनाएगा हार्द के मुर्गा खूब चीता चीता कौस बांध के साथ और सवेरे सवेरे चाय या तो कॉफी बैठ करके आप लोग पीते होंगे तो स्वादिष्ट कीजिए या तो आप लोग ऑन

हमारे प्यारे सुने वालों, ठीक है 10 बजने वाले हैं, आतिश भाई ना 3 uur. Het is vrijdag 8 mei. En het is lekker weer. हमने नहीं तोड़ कहती कैसे बा दस वही दिखनी मैं यहाँ पर जहाँ पर बाटी मोई से घाम निकल बा और उजाला रेडियो आप लोग के साथ है या तो हम आप लोग के साथ है आइया ना दे रिक्लाम ना दे ब्रेक बैनिक भी तरुख कहीं पर ना जाइए यार और उजाला रेडियो का दफ्तर भी खोले गए हैं जहां का फोन का नंबर है 023-09-0807 पर आप उतार कर सके जो भी आपको पूछना है जो भी कहना है ऑल इज वेलकम

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और शुक्रवार 8 तारीख मई का प्रोग्राम चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं सुनते ही जाइए, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम रहेंगे। और उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 9 3 9 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके। और उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 20 3 6 3 0 8 0 8 पर, जवाल 9 20 3 6 3 0 8 0 8 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके दिन में 12 बजे तक। Het is bijna weekend, mooi zonnig weer maar. और दिमन शहर में चलिए फौसिया भी प्रोग्राम को बनकर सुने। फौसिया तो ये गाना

और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और देखा जाए और मेरे शहर में जहां पर इस वक्त माला मुंगार जी भी प्रोग्राम को बैठकर

एक नजर एन दिल तुझे मान लिया सनम, आई सरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। चलिए अब की बार तो गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो फैंस पॉलर में देखा जाए एमी जी प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो एमी जी ये गाना तुम्हारे नाम। और चलिए जो गाना हम आपके लिए सुनाना चाहते ये होना चाहिए सेज आत्मा जी की आवाज में।

वेल यार, जीवन जीवन एक अधूरा सपना है, कुछ देखा है एंड कुछ बाकी है। अब इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने से एच आत्मा जी की आवाज में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए होफ दौर में आनंद मंगरू जी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं खुद मोरख।

0: वेल वेल यार, ये दिल बस अब तेरा हो गया और तेरे बिना हर शाम अधूरा है यार। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने,
1: हवा में खुली है तेरी सी।
0: और सुनीता अभी तक बेल्खी में प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, चाय या तो कॉफी के

तेरी चाहत में है जिंदगी, तेरी खुशबू में है तेरी चाहत। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और देखा जाए शाला भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं खुद मोरख।

बोल बल यार रप करे तुझसे दिल ये जुट जाए और तेरी दुनिया बस यार बस बस बस यार खाली प्यार बोले और बिजली सारा बोले करके जैसे मेरे दिल में आई बॉय और देखा जाए सत्य भी प्रोग्राम को सुने हैं बाल सब गरुण सुन के जाने दिल और मचले लगे हैं और जैसे वीकेंड बहना बात और खुशी होवे है कि बहना वीकेंड बा और सब गाना सुन के दिल में खुशी हो जाते हैं यार दिलवा जैसे पागल हो जा है

वेल यार तेरे इश्क में पागल हो गया एंड दिलवा अब क्या करे यार, दिलवा इतना प्यार करे है। और जैसे रेमी बोले कि उजाला अख्तर खरों पर है, बैकग्राउंड पर है, और बोले कमो हली अली हो गए जब रेमी वैरक्स। और हुर्रचर में चंद्रा और शौकत भी प्रोग्राम को सुने हैं। गुड मॉर्निंग।

पल यार इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने तेरे प्यार में बोले पागल हो जाऊं बोले दिल में एंड हमें को बात बोली थोड़ा सा माइल बोले कि दिलवा सब चीज करे दिलवा सब चीज करे चाहे तू मान या तो ना मान दिल है तो दिल है। तो चलिए अलमेरे में सुनीता और रूबेन प्रोग्राम को बैठ करके सुने प्यार के साथ

बोले खुदा से मांगा है तुमको ओ सनम। वेल कितना मोई गाना, बोले खुदा से मांगा है तुमको ओ सनम। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, 10 मिनट बाकी रहा 11 बजे में 3 मिनट फॉर 11 और ब्रेडा शहर में श्रीमान और श्रीमती बिहारी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं।

वेल यार, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने कुमार शानू एंड अलका याग्निक के आवाज में। वेल देखा जाए मीला कट्टू सिंह फैंस पोल्डर में प्रोग्राम को सुने हैं, बोले हम सुनी लो और बोले तू सोच सके है वो का करे है पकावे है तो लिखने नहीं क्लब जरा सोचो बाकी ना लिखी इसकी का पकावे है, आई बोई ना बता इसकी का बनावे है का खाएगा ना लिखी सहेगा आई बोई। करीबन 5 मिनट बाकी रहा 11 बजने में।

यार तू ही मेरा सहारा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने राहुल करीबन ने करीबन एक मिनट बाकी रहा 11 बजे में एचएस बैना एलो फिर यार एचएस बैना वीकेंड। आप सभी को मोई वीकेंड, मोई वीकेंड तो लोग बिताइए अपना मोई वीकेंड वहां अपने आप के जरूर से ख्याल कीजिए। आप लोग से बता चुके हैं एचएस मोई वेर एचएस लेकर वेर यार अबे बाहर ना गए बाकी महिया से वेरवा देखा इतना मोई चटक घाम निकल बा और ऊपर से वीकेंड आई गए है और सब कोई पकावे है जैसे मेला भी पकावे है। एक कहती उजाला रेडियो सुने है और एक कहती पकावे है। देखिए कुछ जर ना जाए।

तोर कसूर है। हाँ हमें कसूर सही कर देंगे। तो मैं सलत वेल खुद हो या जो ची कर रहे थे खुद ना। ओके ना द ब्रेक ना द रिक्लाम।

रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और वीकेंड रेडियो या वेल सुभाष के साथ वीकेंड रेडियो उजाला रेडियो आई बॉय द बेस्ट वन अमस्टरडम शहर से प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आप सभी के लिए।

Aur, Caribbean, 7 minuten wijd het hotje collega 11 bachker, 7 minuten over 11. Goedemorgen allemaal. Aur, kitna mila apan kamper bhi program ko badikir sune, Ujala Radio ka program. Aur, chori chori, chupke chupke. Jawel, stikam stikam yaar. Tab to bole kamua halyali hoi. जैसे कोई पकावे हल हली काम होवे, कोई घर के काम करे है, चाहे जो ची आप लोग करत होइए यार, प्यार से दुलार से। तो चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, ये गनवा चाहे जितना जाए जाए सुनिए, चाहे हजार जाए सुनिए, इतना मोइबा तेरा चेहरा।

ये जमीन भी रुक जाए या आसमान भी झुक जाए, बोले जब तू हमारे नींद में आइए तो मेरा सपना बोले लेके तू चला जाइए। तेरा चेहरा जब नजर में आवे, अन्नान स्वामी जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

मौल जीते जी कहीं खो जाए, मिलो ना तुम ऐन दिल घबराए। बोले दिल दिल हमेशा यार, हम दोनों से कई जान बताए चुकली कि दिल जो भी करे है तो अच्छा करे, चाहे जो ही करे प्यार से।

जान भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है एंड ये जान भी तुम्हारा है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चुका है 11 बजकर थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ आर एन एम शहर में देखा जाए शारदा भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं खुद मोरखा

दुनिया से दूर मोहब्बत में हम आगे यार, दुनिया से दूर एंड मोहब्बत में हम आगे। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, ठीक 11:30 का वक्त ही हाल अफ्तवाल। और देखा जाए अलमेरे में आईफी भी प्रोग्राम को बड़े कृष्ण खुद मोरखा

तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत रे भर दे झोली। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने द किंग ऑफ बैठे गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं करीबन 20 मिनट तक और आप लोग के साथ।

जब से नजर दिल तेरा मेरा हो गया, अब तेरी बातों में वो नशा जो है वो। कितना मोई, कितना बिसाल गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, बोले तेरी बातों में वो जो नशा है तो बल दिल बहलाता है। एंड यू आर उजाला रेडियो है।

कमल यार बोले तू मेरा दिल को पढ़ा था ना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रही थी, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम और पौने 11 का वक्त है, इट्स क्वार्ट फॉर 12। मिस्टर संजय योद्धा जी

जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा और हमारा। और इस तरह से संजय योद्धा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड पियानो शहर में परिवार अवतार भी प्रोग्राम को सुने उजाला रेडियो खुद मोरखा।

0: वेल वेल यार, तुमको हमने देखा और हमको और हमने तुमको देखा। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं रोमांटिक सॉन्ग।
0: और हमारे प्यारे सुनने वालों, देखा जाए तो करीबन 6 मिनट बाकी रहा 12 बजने में। इसका मतलब यह हुआ कि आज का प्रोग्राम एक आखिरी गाना आप लोग सुनेंगे।

हमारे प्यारे सुनो लो, बस तेरी मेरी चाहत का बारस हो रहा है। और हमारे प्यारे सुनो लो, इसी गीत के साथ हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे। आशा है कि आज का प्रोग्राम जो हमने बनाए और सजाए आप सभी सुनने वालों को पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। फिर से हम आप लोगों से मिलेंगे आने वाले दिनों में। आप लोग मौज से रहिए, अपना वीकेंड तो लोग मौज से बिताइए, मौज से खाइए, मौज से पिए, मौज से रहिए। जो भी आप लोग करेंगे प्यार

अपना वीकेंड तो लोग मौज से बिताइयो, खिदमत की आपका दोस्त सुभाष सिंह गोविंद, मौज रहिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज, बाय बाय।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

Daarnaast Coffee Chai Middagshow. Sunwalo, Aatje, Sukrawar, Sukrawar, Aatarik Mei, 8 mei. मौसम कितना अच्छा है, घाम निकल रहेगा, वहां न खुद वीकेंड तकमूत देंगे ही कोर, हाँ, जब घाम आज निकल रहेगा, तब वीकेंड वा और मुई रहेगा। मैं हूँ लॉज महावीर, अन हेल गुड मिडाग अलमाल।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूड ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनेटरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: You are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoop het Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoop de Oud-Dijk en Velpenbroek. Door gaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ
3: टंटना टंटन तारा चलती है क्या नो से बारा
4: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम

विज्ञान की फ्लाइट बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

0: ये होते होते अपना ये हाल हुआ, यानी सतीशवा के, अरुणवा के, या विजया के, या फिरसवा के ये हाल हुआ। अरे बिक गए सूत बूत तो क्या रहेगा भैया सतीश
1: चौकी।
0: अरे

Bella's Coffee Chai Middagshow. Sunwalo, Aadje, Sukrawar, Sukrawar, Aadtarik, Mei, 8 Mei. मौसम कितना अच्छा है, घाम निकल रहेगा, वाहन खुद वीकेंड तकमूत देंगे कोर, हाँ, जब घाम आज निकल रहेगा, तब वीकेंड वा और मुई रहेगा। मैं हूँ लॉर्ड महावीर, अन हेल गुड मिडाग अलमाल।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

हम यहीं पर आपसे इस प्रोग्राम के साथ जुदा होंगे। बहुत जल्दी फिर मिलने के लिए आप ही का मन प्रिय उजाला रेडियो पर।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

अरे मेरी जान कुछ भी कीजिए पर दिल हमी को दीजिए। और आप सुने लता मंगेशकर और मुकेश जी से फिल्म छलिया का गीत उजाला रेडियो।

तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आप सुने, और फिल्म का नाम अप्रैल फूल।

0: झुमक मत चलो आज मत चलो किसी का दिल तड़पेगा। मुकेश जी की आवाज, फिल्म का नाम कहीं प्यार ना हो जाए।
1: चलो आज मत चलो।
2: यू आर,
3: दिस इज हेलेने द गेस्ट फ्रॉम द एनबीबी। Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ujala's Sona Chiraya.

और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है बैनी दयाल एंड श्रेया घोषाल। इन दोनों से आप सुने फिल्म गजनी का गीत और अब हिस्सा लेंगे एक बार फिर श्रेया घोषाल मर्दान सोनू निगम के साथ।

और तूने तो पल भर में चोरी किया रे मोराजिया, पल भर में चोरी किया मोराजिया। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल, इन दोनों से आप सुनिए फिल्म दबंग का गीत है। दबंग एंड दन नोख अंकेर श्रेया घोषाल जावेद अली के साथ।

Hey, सुनो वालों, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

Jana's Coffee Chai Middagshow. Sunwalu, Aatje, Sukrawar, Sukrawar, Aatarik Mei, 8 Mei. मौसम कितना अच्छा है, घाम निकल रहेगा, वहां न खुद वीकेंड तकमूत देंगे कोर, हाँ, जब घाम आज निकल रहेगा, तब वीकेंड वा और मुई रहेगा। मैं हूँ लॉज महावीर, अनहेल खुई मिला खालमाओ।